0: आम गोते गाहने की वारंग हंदाह ने तेमी हैं। बैद वस्तु खांग अने बैद वस्तु फोनवन जे मेल ता फोनवन। बर्थडे से हंदाह कुरंग अधि माँ उन्दोगु कमे। एक मुक बिल ता दक्कन ता। दुव हकुए संदाह नुन तेने। करंट बिल, फेम बिल, फोन बिल कस दाहिन नुवान। हंदाम विसुरे। वगुतुं वगुता फाही पे में दुरी को फ्यासा विस ट्रांसफा कुरेवे। क्यागें बिल कंडाला फा पेमेंट रिक्वेस्ट विस फोनवे। साड़ी दो। गेमिंग रीचार्ज विस हम फाही पेइं। अनलिमिटेड रीलोड अधि रास्टस। ऐसा के हुरी हाँ मुआमलाते फाही पे में दोरी को फाही पे वारा फाही
1: इस्लामी उधर है
2: मैं प्रोग्राम का मैं गेनेस्टीनी नोवेल्टी प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड उन शाय को फवा अब दो फारुक हसन लियोवा फवा स्वर्गे वंतवेरी दिहा पे कलों मैं फोटो का वादियों ता हुशाल ऐदिनी रुगी या वाफिरा
3: दिवे FM दिवे हिन्नाए को नौ दिया 1 मेगाहर्ट्ज़

मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती। और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

0: मी मरियम रिफ्का रशीद, रिफ्का गार्ड, दिवे ही एफएम, दिवे हिन्नाइक, दिवे हिन्नाइक।
1: मोदी है एक मेगाहर्ट्ज़, दिवे ही एफएम।

0: දෙහස් පන්සවීස් වනහ රිලිස් කුරි හින්දි ෆිල්ම් හෝම් පවුන්ඩකී නීරජ් කයිවන් අදී සුමිත් රෝයිගේ ස්ක්‍රීන් ප්ලේයක නීරජ් කයිවන් ඩයිරෙක්ටර්කෝ ධර්මා ප්‍රොඩක්ෂන්නු නෙරුණු ෆිල්මේ ෆිල්ම්ගේ ලී තරිනකී ඉෂාන් කත්තර් විශාල් ජිත්වා අදී ජාන්වී කපූර්
1: හලෝ සර් පොලිස් ભરતી કા રિઝલ્ટ કબ તક આયેગા
2: કભી હસ્તે બેવજે
0: હોમબર્ડ કે મેગણ વાહકે દક્વા દેની ઉતરુ ઇન્ડિયા કે કુડરશે ગોલે કુડેરુ કે દે રહમત તરીંગ કે વાહક એ દે મીહું કે વસુવા ફેનેકી ફુલસ ઓફિસર ઉનવું એમીહું દેકે ગોતુગા ફુદુહું કે યુનિફોર્મ ઉન એમીહું ન દુહા કુસ દીફણવા ઇખતિરામ લિબિકેન દાને એહં કમું ગૌમી ફુલુહું કે ઇમ્તિહાન તૈયારવે એ ઇમ્તિહાનું ફાસુમા મસિકે કુરમુંદનિકો એમીહુગે અમાઝા ઉમ્મીતહુગે બારા દિમાવા હાલેતહુગે સબું એમીહુગે હિવરા રહમતિરકમા કુરિમતિવા કુંજેહુંતા મે ફિલ્મું દક્વાદે
1: સર જૈસે કે આપ દેખ સકતે હૈ પાણી કી રીડિંગ યહા પે 250 દિખા રહા હૈ યાની કે ઇટ્સ નોટ ડ્રિંકેબલ બટ ડોન્ટ વરી સર વી હેવ અ બેસ્ટ ટેકનોલોજી પ્યોરોસ આરઓ ફિલ્ટર જિસમે હૈ યુવી યાની અલ્ટ્રા વાયોલેટ રેડિયેશન ટેકનોલોજી એન્ડ યુએફ યાની અલ્ટ્રા વાયોલેટ ફિલ્ટ્રેશન એન્ડ ઇન ધ માર્કેટ
3: ઇટ્સ બેસ્ટ બોલ રહે હૈ ના યે બહોત મહેંગા લગ રહા હમે
1: ઈએમઆઈ ઓપ્શન ભી હૈ મેમ
3: હમ ક્યો લેંગે ઈએમઆઈ પે
4: હમકો જરૂરત નહીં લગતી ઇસકી
5: સર મેમ હા હા
6: નહીં મેમ હમ કહે રહે થે કે आप तो जान ही रही हैं कैसे खराब पानी से टाइफाइड दस्त ये सारी बीमारियां भी फैल रही हैं और ऊपर से दवा इलाज का खर्चा अलग
3: पर हम हमारा पानी उबाल के पीते हैं
6: नहीं सही है मैम पीना भी चाहिए लेकिन पानी उबालने में भी रोज 15-20 रुपए गैस जाती है ना और सिलेंडर के दाम तो आप देख ही रहे हैं कैसे आसमान छू रहे हैं अगर जोड़ घटा के देखें तो ये हमारा फिल्टर आपकी बचत ही करवाएगा और आप सब की सेहत भी ठीक रहेगी
0: विवाह की देहास विहिवनाहर न्यूयॉर्क टाइम्स नेरुनु आर्टिकल लकुं इंस्पायर वेगे लिफवा वाहके अ टेकिंग अमृत होम गे नमग नेरुनु ए आर्टिकल गे नंग फहुं अ फ्रेंडशिप अ पेंडेमिक एंड अ डेथ बिसाइड द हाईवे अ बदल कुरेवुनु मे आर्टिकल लियोनी कश्मीर गे नूसवेरिया बशारत पीर ए आर्टिकल ग अलियलवाला फनी कोविड नवारा गे लॉकडाउन गे तेरेगा देहास विहिवनाहर गे मार्च महु सूरत का ताशेफति बिदे जुआ मसेकत मी हुना कुरिमतिवे हागीगी हादिसा तके के मच्चा मे आर्टिकल फिल्म का बदल कुरुम गे तेरेगा मैगड़ दे कैरेक्टर गे बैकग्राउंड स्टोरीया बदल गेनेस फिक्शनल कोफवे नाम वेस आर्टिकल गे मैगन इमोशन तवनी हिमनाफा मे प्रोजेक्ट फेशिकेंग ए कोविड नवारा गे बलिमडकम गे दुवसवरुगा धर्मा प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर सोमन मिश्रा नीरज कैवण ए आर्टिकल कियालु मद्दिं हिसाबुं मि फिल्म गे मसे के फशा धर्मा प्रोडक्शन नो न्यूयॉर्क टाइम्स उं मि आर्टिकल गे राइट्स कतम फो मा गिन दोस्त के नोए फिल्म स्क्रिप्ट के मसे के फेशी फ्रांस के प्रोड्यूसर मेलिटा टोस्कांदो प्लांटिए वनी फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर गे गोतुगा मार्टिन स्कोर्सीजी हम जसाफा अदि नीरज स्क्रीन प्ले लियुम गे मसे कतुगा एही तरकम फोर को दीफवे फिल्म के थिंक कट वेस फाइनल कोफवनी एनागे अप्रूवल लायकीगा होमबर्न के प्रोडक्शन मसे के कुरिय गेंगोस फवनी दिहा सर्विस वना हारु मैगन गोते ग इंडिया के मध्य प्रदेश स्टेट के भोपाल आदि एगे वशागन वा हिसाब तो ग फिल्म के शूटिंग कुरिय गेंगोस निम्माला फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के मसे कतफहु मि फिल्म फाइनल अगवा मि फिल्म वर्ग दक्कम फेशी देहास फंसेस वनाहर गे मे महुगे एकाविस वन दुहु फ्रांस का बेवनो है दिहा अवन केन्स फिल्म फेस्टिवल गा मे फेस्टिवल गे अनसर्टेन रिगार्ड बैगा मे फिल्म दा काफा वैरु फिल्म दे कुमा फहु गैकंड का नुआ पिनेट के स्टैंडिंग ओवियशन ने मे फिल्म वनी दे बिफा एफओ देहास फंसेस वनाहर गे ऑगस्ट महु बेवी मेलबर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गवस मे फिल्म वनी आडवाफा अदि देहास फंसेस वनाहर गे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गे गाला प्रेजेंटेशन बायवस मि फिल्म होवनो इरु ए फेस्टिवल का मि फिल्म दा काफवनी देहास फंसेस वनाहर गे सितंबर महुगे दिहवन दुओहु
7: सरकारी फार्म की कैटेगरी वाले डिब्बे भर के औकात है हमारी और बस वही तक सीमित है वही हमारी पहचान
8: पहचान वो नहीं है बे जो हमें पकड़ाई गई पहचान तो वो है जो हम खुद बनाते हैं
0: ಸಿನಿಮಾತವ್ಗ ದೆಕ್ಕುಂಗೆ ಕುರಿನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೊಂಗ್ ಎಗಾರ ಬದಲೆ ಮಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಗ್ಗೆನೆ ಎ ಬದಲ್ತವ್ಗೆ ಸಬುಂ ಎಮ್ಮಿನಟಾ ಸತಾರ ಸಿಕಂತುಗೆ ಫೂಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಕುರೆವುನು ಹೋಮ್ ಬೌನ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಿನಿಮಾತವ್ಗ ದಕ್ಕಂ ಫಶಾಫನ್ ಇತಿಹಾಸ್ ಫನ್ಸ್ವೇಸ್ವನಹರುಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಹುಗೆ ಸಬ್ಬಿಸ್ವನದುವಹು ಹೋಮ್ ಬೌಂಡಕಿ ನುವದಿಹ ಅವ್ವಣ ಎಕಡೆಮಿ ಎಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ರಸ್ಮಿ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಸ್ಮೆ ಬಲಾಲನ್ಸಲಿ ಮಿ ಶೋಗ ದೆಂ ಅಳ್ಗುಣ ಹಿಮನಾಲ್ದೇನಿ ಮಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಲ್ಲವೆ ಹೋಮ್ ಬೌಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗ ಮಾಗಿನ ಲವತಕ್ಕೆ ಹಿಮನಾಫನ್ವೆ ಕಮ್ಗವಿಯಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗ ಹಿಮನೆ ಯಾರ್ ಮೆರಾ ಮಿ ಲವೇಕಿ ಗಿನ ಬಯಕ ವರ ಕಮುದಿಯಲ್ಲವೆ ಮಿಲವ ಕ್ಯಾಫಣಿ ಜಾವಿದ್ ಅಲಿ ಅಮಿತ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಅದಿಪೆ ಪೊಂಡ್.